एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई तू करता करना मैं नाही जा हों करी न हुई बलिहारी।

त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस

वै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्या वह हर त्या वह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी

निश्चल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई।

तुद बिन दूजा अवर न कोय, तू कर कर वेख जान है सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय। आसा महला पहला।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बास बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सबै करतारा।

प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल योगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आदंतिक अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मुह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाबुद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताको कृपान अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा शिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम्पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव।

उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो

चाहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छा छव सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुंभारा,

मतिक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपीत कह अमिक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हिब खानियो दो हरा सगल।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच

आहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सब सहनो कृपाल संभाली साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जी आवे तुले आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाऊ, नित्रि सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाऊ, सतगुर सेती रत्या दर गह पाई ठाऊ, कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे, जग में उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

साध जना कै संग भव जल तारेन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारेन। तिस साहिब की टेक नानक मनै माही, जिस सिमरत सुखो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल सुमगिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो सो आज्ञा का।

0: واہ جی کا خالصہ واہ جی کی فتح.
1: जाने तुमरा अंत जाप गुवंत सगल समग्री तुमरे सूतर तुमते हो सो तुमरे गत मित तुम्ही नानक दास सदा कुर्बानी. बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु. एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह. श्री भगवती जी सहाय वाह. श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ध्याए. फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुई सहाय. अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है. जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौन दयावे ताए. सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब महाराज जीओ. सब थाई होए सहाय दसम पातशाहियां दी जोत. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी. पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देग के डिठ कीता तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी. जिना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया ने चराए गए गुरद्वारिया की सेवा लिये कुर्बानियां कीतिया धर्म ने हारिया सिखी केसा स्वसा संघ निभाई तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी. पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी. प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी. सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चतावे चतावन का सदका सर्व सुखो जहां जहां खालसा जी. साहिब तह तहर शरियायत देख ते फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय. खालसा जी के बोल बाले बोलो जी. सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान. श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी. सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो. श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियो के मान ताणियो के तान. न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ. दोए कर जुड़ करूं अरदास तुद भावे ता आणे रास महाराज जी. आप जी दे चरणा च अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश होई. पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर शब्द दीआं विचारां उपरंत अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन होए महाराज जी. समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं आप जी दी सेवा संभाल करदिआं होईआं बेअंत भुल्लां बख्श देणीआं जी. अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उद्दम बख्शिश करना जी. बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदिआं ते वसाउण आईया संगतां दी हरि दर प्रवान करने सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनीआं सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिक्खी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी. दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी. सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिआ बख्शिश करनी महाराज जी. बेंत संगतां दूर दराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी ते जाप सरवण कर रहीआं हन जाप सरवण करदिआं आप जी का धनवाद करते हैं. बेंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी. सारी संगत की हाई दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया बरकत पाया शरदा भावनावान संपूर्ण करनी आप दर घर के सेव ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਦ 1000 ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खूजह महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोकुर तारे जुवंतर नाम सर्व में पिख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है नानको पर सगल निस्तार अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप न पिख है नेत्र सात की टहल संसंगीत कर न सुने काहू की निंदा सब त्रिजा ने आप सुख मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की वासना मन तिट रह इंद्रजित पंच दुख ते रहत नानकोट मदे को ऐसा पर सुबह सुन सो जी सुपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह नि कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल किच्छा नहीं बाचे केवल भक्त कीर्तन संग्राच है मानता ने अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानको वह सुन परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सासंग पापा मलक होवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मंत अर्प बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म मैं सोदय राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उदय जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नयावे वेद प्राण सिमृत बूझे मूल सुख मैं जन असूल चौ वर्ण को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चो वरना मैं जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत हुए सासंग पावे जन को कर कृपा अंतर उतार है पस ब्रिज मुक्त पात्र को तार है सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहु जूत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिलया जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिसने दरियाया दास दसन तिन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूजी पर सगल संगा तुम दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरक तैसा सोग सदानंद नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा अमृत तैसी बिकाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ईसाई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित घर राखे तैसा तिन नाऊ आपे करण करावण जोग प्रभाव है सोई फुन होग पसुर आप अंतरंग लखी न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविधानिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद की श्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावे, नान करते कांत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिगा तुम निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम आए, कई कोट प्रदेश पर माए, जित जित लावो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्धि जोगी, कई कोट राजे रसभोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पात्र बृख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशियर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानु जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुन्द, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वरण थीवे, कई कोट जग कि नर साच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाज, सब ते नीरे सब हुते दूर, नानका पलिप्त रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बोझो नी फिरे, कई कोट बैठत ही खाही, कई कोट काले थक पाही, कई कोट गीत नवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिनले विलागी, कई कोट प्रभु को खोजंत, आत्म में पार ब्रह्म लांते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभु विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बोपात, प्रभ ते हुए ब्रह्मा समात, ता कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तुम प्रगास, कई कोट तत् के बीते सदा निहारे को नित्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, तुमरा सुख सह संभावे, अपने जन का अपने जन को सा सा संवारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रवे कहे दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहार न जल थल मही अलसो, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन मैं था पुता पनारा, अंत ने किछ पारा वारा, हुक्मे धार धर रहावे, हुक्मे उपजै हुक्म समावे, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक समय रहा सुमाई, प्रभावै मानु गत पावै, प्रभावै ता पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै ता हर गुण भाखै, प्रभावै ता पत उधारै, आप करै अपन बिचारै, दुआ सिरिया काप स्वामी, केलै विकसै अंतर जामी, जो पावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इश्क हाथ हुए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत विख्या मै रचै, जी जानत अपना बचै, भरमे भूला दै दिस आवै, निमक भरमे भूला दै दिस धावै, निमक माय चार कुंठ फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका तिष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दा जिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीश, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवे दिख बढ़ाई, इसका बल ना ही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावे सोई फुंथियो, कबू ऊंच नीच में बसे, कबू सोग हर रंग हसे, कबू नींद छिंद व्यवहार, कबू उबकाश पयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावन हार, कबू नृत्य करे बहो पात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू अब कीरत में आवे, कबू भला भला कहावे, जो प्रभु राखे तिव ही रह, गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कबू हुए पंडित करे बखियान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीरथ स्नान, कबू सिर साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जियानिक, जोन पर मैं परमी, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभु पावे तिवै नचावे, ਜੁਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਬੂ ਸਾ ਸੰਗ ਤੇ ਉਪਾਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼। ਮੰਥਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਿਆਏ ਕਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਰੂਪ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀ, ਆਇਆ ਪਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋ ਅਸਵਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜਨਤਾਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਨਕੀਆ ਮੁਕਤਾ ਕੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭ ਆਵੈ। ਤਿਨ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਬੋ ਲਸਕਰ ਮਾਨ ਕੂਪਰ ਕਰੇ। ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼, ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਇ ਪਸਵੰਤ, ਕਿਸੇ ਨ ਵਿਦਿਆ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੇ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਤਾਰੇ, ਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਨਰਕ ਸੁਰਖ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰਨ, ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਾ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ, ਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਕਿਰੇ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾ ਹੀ ਚੀਤ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਕੋ ਛੁਟੈ। ਸਹਿਜ ਕਟੇ ਲਗ ਕੋਟ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ ਨੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ ਖਪ ਖਮਰੈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰਥੇ ਸੋ ਕਾਜੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਿੜਭਾਗੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹੱਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਿਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਬੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ, ਆਪਹਿ ਕਾਪੈ ਅਨੇਕ। ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ, ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਕਿਨੂ ਆਪਣ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭ ਕਛੁ ਉਸਕਾਉ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛੋ, ਥਾਂ ਤਨੰ ਤਰੀਕੈ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਲਤਾਉ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਕਉਥ ਕਰੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਮਨ ਮੈਂ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਖਿਆਨੀ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਿੰਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤਰਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ, ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ। ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਖਟੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨੀ ਛੁਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਭਾ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕੇ ਹਥੇ ਕੋ ਰਖੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀ ਕਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜੋਨ ਲਵੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ, ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਧਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਤ ਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿੰਟਿਕ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਹ ਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਅਰਦੀਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਰਵ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤੁਸਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਂ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਡਰੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਠਾਉ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਥੈ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਤੋਤਾ, ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਤਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾ ਆਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਗਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਭਾਰ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀਓਂ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਵਿਹੁਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜ ਆਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ। ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਕਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੈ ਕੇਲਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲਕੇ ਤਮਾਏ ਦੁਹਿਲਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਮਿਤ ਆ ਕਹਿਤ, ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਤੁਰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न ऐसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट है कोई, जैसा पावे तैसा कोई हुए, पै कीर्तन न मिटे कोई, नानक जान सच्चा सोई, सब कट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तद करो दिन रात, तिसे त्याहु सास ग्रासु, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथी, अपना खेलाप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक, तजहु से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आसर मन रखो, नानक दुख परम पो जाय, अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति, सब जान देवन को एक है भगवान, जिसका दिया रह गाय पौर तृष्ण लग गए, आय मारे रखे कुआ, मानु कह किच ना ही हाथ, तिसका हुकुम भूसु कोई, जिसका नाम रखंड प्रोय, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय, नानक विघन लग गए कोई, उस दिन मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो फेक ठाकुर का रंग, सा संग विनसा सब संग, चरण चलो मारो गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मथा बड़भागी, तेजन जगमाए, सदा सुधार के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पहचाने तुतकी, सुजी जान नाम सब जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, सास संग हर हर जस कह, तू सर्व रोग त्यो हर जन रह, तू अंदर कीर्तन केवल बख्यान, गिस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की असर, तिसकी कटी है जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रमन चित आवे, सो सन सोहेला नहीं डुलावे, जिस पर भी अपना कृपा करे, शुभ सेवक को किस ते डर है, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद था सब बुझिया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोये सूल, न कि जन्मे न किस मरे, अपन चलता भी करे, अवन जान दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी, सारी सब सृष्टि आपे आप, सकल में आप, अनेक जुग त्रज थाप थाप, अपना सीना ही किच खांडो, धारण तारे हो ब्रह्मांड, अलक पे पुरख प्रताप, आप जो पाए तो नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो सो बावंत, सगल संसार उतरे तिन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदारण, प्रभु के सेवक दुख बिसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिष्णु कृपा करे बड़भागे, नाम जो पावे विश्राम, नानक तिन पुरखोत्तम करमान, जो किच करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुभा हुए सो हुए, करने हर पहचान है सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सत सा दृष्टाना, जिष्ट उपजे दिशा समाये, सुख निदान बने आए, आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभ जन इको जान, श्लोक सर्व कला भरपूर, प्रभ बिरथा जानन हार, जाकर सिमरन उदरिया, नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गाडन हार, गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माही, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, विनाशी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचे कोई, तिस भी नाही चीरे किच काम, गत नानक जपे खर नाम, रूपवंत होए नाही मुह है, प्रभ की जो सगल कट सो है, धनवंता हुए क्या कुगर्भ है, जा सब किस तिसका दिया दर्भ है, असुरा जी को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह जी को हुए वह दातार, तिस दिन हार जाने गवार, जिस गुरु प्रसाद उठे हो रोग, नानक सोजन सुधा रोग, जो मंदिर को थमे थम, त्यो गुरु का शुद्ध मन है समन, जो पाखान आप चढ़त रह, प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठ रह, जो अंधकार दीपक प्रकाश, गुरु दर्शन देख मन हो विकास, जो माव जान में मार्ग पावे, त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचे पूर, मन मूर्खाहे बिललाए, मन मूर्खाहे बिललाए, पूर्व लिखे का लिखे पाइये, दुख सुख प्रभ देव नहार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बसताई तीर संग लपट रहे, रसलू भी पतंग, राम नाम जप हृदय माही, नानक पद सिद्धि कर जाए, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताज अभिमान लिहो मन मूल, राम नाम हृदय में तूल, लात के सुनते संग चाल, अवर त्याग विखिया जंजाल, तन तन कह सब कोई मुखो, जल हर दर कह सोए, वापार विरला वापार है, नानक ताके सुध बलिहार है, चरण साध के तुए तुए पीयू और साधु को अपना जीव साधु की तुर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा वट भागी पाइय साध संगर कीर्तन गाइये अनिक विघनते साधु राख्य हर गुण गाय अमृत चाख्या उठ गई संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाय अमृत को जीवालन हार भूखे को देवता दार सर्व निदान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस चिस्काव करने जो तिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नान सूजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिया त्यो लोहे जाके हृदय को हुई सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुकैत साची दृढ़ सचाया कारु सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिस है बुझाई नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मानुक की तुपरी त्याग तिस्ते पर नाही किछ कोई सर्व निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गैर गवीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शन साथ तेरे की चरणी पाओ नानक के मन हो अनुराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो हरण भरण जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जाने हो अनद्रु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिया करता कै राज में राजयुग में जोगी तब मैं तभी श्री कृष्ण में भोगी त्य ते भक्त सुख पाया नानक तिस पुर का किनंत न पाया जा की लीला की में जनाय सगल दिवारे वगाहे पिता के जन्म के जान है पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाहे जन्म मरै फिर आवै जाए ती ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जाना न रूप ना ना जाके रंग ना ना फेकरे करंग ना ना बिद कर बन नाना विद किन विस्तार प्रभु विनाशी एक अंकार नाना चलत करे किन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर दिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे हर नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम कैसा गुदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथी पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत साकी बाणी करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाय समानी सत कर्म जाकी रचना सत सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाय जिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सत वचन साध उपदेश सत्य जन जा के हृदय प्रवेश सत नित बुझे जे को नाम जपता की गत हो आप सत की है सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने की या नान जो जिस भाव है सोवर थी या बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंगराज जन रही गुर कै वचन पदार्थ लही ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत भेखन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पह ते निरप हुए बसाना जिस ते उपजिया ते समाय समाना बस्त माहेले बस्त गडाई ताको पिन्ना कहना जाई बूझ बूझ नार विवेक नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम का रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारे, नानक सो सेवक साथ साथ सुमारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को देव बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत में तो कोई न लाके, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक कुछ दे उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दात इस प्रगटाया, निकी कीरी में कल रखे, पस्म कर लश्कर कोट लाखे, जिसका सास न काटता पोता को राख दिख रहाथ, मानस जितन करत बात, तिसके करत वृथ जात, मारण राख अवरण कोई सर्व जिया का राखा, सोई काय सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बारंग बार बार प्रभ जप पिय, पिय मृत्यु मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके चवर नाही दृष्टाया, नाम था नामो रूप रंग, नामो सुकर नाम का संग, नाम रजो जंत्र बतानी मंथन नाम मैं नाम समानी उठत बैठत तो सोवत नाम कहु नानु जन कह सद काम बोलो जा जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदाद करे भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने शिव रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने जिसकी महिमा कौन बखानु तिसका गुण कह न जानू आठ पर प्रभ सह हजूरे कहु नानु से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मंथन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर स्वभाव मिटावे अवर स्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा
1: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाओ तिसके संग से कुदरे नानक हर गुण गावट परे सतगुर से की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल से की गुर दुरमत मिलहरे गुर वचनी हर नाम उचरे सतगुर से के बंधन काटे गुर का सिख बकार ते हटे सतगुर से को नाम तंदे गुर का सिख उड़ पागी है सतगुर से का हलत पलत सवारे नानक सतगुर को जी नाल संवारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आप उसको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए ने कमी तिसको होत प्रभु स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नान सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु हृदय अरनाओ अनक बार गुरु को बल जाओ सर्वदान जी का दाता आठ पैर पार भरता ब्रह्म जन जन्मे पार ब्रह्म एक आप नहीं के परम साय सियाणप लैण जाइए नानक ऐसा गुरु पागिन पाइए सफल दर्शन पेख पनीत पर सरचरण गर निर्मरीत पीठ संग राम गुरवे पार ब्रह्म की दर्गे गवे सुन कर वचन कर्ण गाने मन संतोख आत्म प्रत्याने पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र अमर दृष्ट पेख्यो संत गुण बेअंत कीमतने पाए नान जिस पावे ते लै बलाए जे वाएक उस्त अनेक सात पुरख पूर्ण विवेक काहू भो न पूछ ब्रह्मी अगमय गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाई ताकी कीमत इन पाई अनक भगत बंदनित करे चरण कमल हृदय समरे सत बलिहारी सतगुरु अपने नान जी प्रसाद ऐस प्रज अपने युवरस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत होए उस पुरखा नाई करे बनास जां के मन परगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेव को दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हरेक अंधकार दीप प्रकाशे नानक परमो दुख चैना से तौत माहे ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण से पाओ चुका निरपोह बसे सगल व्यास मानते खे न से जिसका सा तिन कृपा तारी सासं जप नाम रारी तित पाई चूके परम गुण सुन नानक हर रजसन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रवाह बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई सर्ब निरंतर एको सोई ओत पोत रवे आरूप रंग पै प्रकाश साध के संग रात रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चले बिन भजन विखिया सगली शहर हर हर नाम कमावना नानक तन सार संजना मिल करो विचार एक सिमर नामदार और पाव सामीत बसारू चरण कौन रिदमिरदारू करण कारण सो प्रसुरत दिल कर कहो नामरवत ए तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मंत एकास राखो मन बाहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सोबा को करे पढ़ी करनी सा सोबा पाजर की सरनी अनको पावी रोग न जाहे रोग मिटे हरब खतलाए सरबंधान में हर नाम न दान जप नानक दरगे प्रवान मन प्रबोधो हर के नाए वैद सावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जा कर दे बस और सोए काल ताती ठंडार नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाव पौ बिन से पूर्ण आस पा भगत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटी जम्फासी तात विचार कह जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गौण मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव क्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण धार अनुपाप न छूटन हारे सिमर सास्त वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नान पल पाए सांगन चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कटामर बनता इनते कहो तुम कौन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी जीन दिए तिस बुझे न बगाना नाम सार नानक पछताना गुर की मातू ले अन्ने भगत बिना बोडू पे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किलबक जाए आप जपो और ना जपाओ संत कै रहत कर पाओ सार पूत सातर को नाओ सहज सपाई नान गुण गाओ गुण गावत ते उतर समैल बिनस जाए हां में विक पैल ओहे अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समार शाड़ सियाण सगली मना सासन पावे सचना हर पूंजी सच करो बिहार इहा सुख घर के जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक पवन एको एक एक हरि आप पूर्ण पूर्यो प्रभु आप अनक विस्तार एक ते पहे एक रात प्रात के मन तन अंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक कजाता श्लोक फिरत प्रव आया भरिया तो सरनाई नानकी प्रभु बेनती अपनी भगती लाए अटपदी जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देव वरनाम साजना की मागो तुर पार ब्रह्म मेरे सरदापुर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास प्रभु तुम्हें त्याओ चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की रतनीत एक ओट एक आधार नानक मांगे ना प्रसार प्रभु की दिट महासुख होए आरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डराने सो पर परे प्रेम संग उपजे जाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रकाश अंध लाग बड़ भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुखोए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मतले जन को प्रभु होयो दयाल सेवकीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन पया जन्म मरण दू पर गया इच पुन्ने सरदासा पूरी राव रिया सत्संग जोरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜਗਣ ਮੇਰਾ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਵਿਖਤੇ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤੇ ਬਜਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੰਤਿਆਇਆ, ਸਾਜਣ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਆਪ ਜਪੋ ਆਵਰੈ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਰਨਾਮ, ਬੂਟ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਸਰਾਮ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਜਾਉ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏ ਸਵਾਉ, ਨੇਤਰ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਕਸੇ ਸਾ ਚਰ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕਉ ਪਾਵੇ ਸੰਗ, ਏਕ ਬਸ ਦੀਜੇ ਕਰਮਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਸੁਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਗਤ ਵਚਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤਪਾਲ, ਆਲ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋਏ ਪਨੀਤ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਏ ਮਨਹੀਤ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬੇ ਮੁਕਤ ਮੋ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਣਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬੜਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ, ਬਹੁ ਪੂਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਪੜੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋ ਬਾਤ ਅਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਸਾਸੰ ਪ੍ਰਭ ਦਿਓ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਲੋ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਰੰਕਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪੋ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਜਬ ਅਕਾਰ ਇਹ ਕਛ ਨੰਦ ਸਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ, ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ, ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਣ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸੈ ਬਿਆਪਤ, ਜਬ ਆਪਣਾ ਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ, ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਉ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ, ਜੈ ਤਾ ਜਬ ਏਕੈ ਹਰਗਮ ਅਪਾਰ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰ ਕਉ ਕੌਣ ਉਤਾਰ, ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸਖਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ, ਆਪਣ ਚਲ ਤਾਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣ ਆਸਨ, ਤਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ, जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किछ पूछत लिखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंदर बादे अपन आप आपी चर्चा नानक अपन रूप आपी उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन त्रिपतावे करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाही जय सर्व कलाया पैपर बीन तह वेद कतेब कहा कुचीन जब अपन आपा पुर तारे तौ सगन अपसगन कहा बिचारे जय अपन ऊच अपन अपनेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जय अचल छेद भेद समाया ऊहा किस है व्यापत माया आप उसको अप है आदेश तेह गुण का ना ही प्रवेश जय एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लाग चिंता जय अपना पाप त्यारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत उच ते उचा नानक आप सुखाओ आप है पहुचाओ जय आप रचियो परपंच कार ते गुण में किन्नो विस्तार पापुंत पही कहावत को नरको सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक कै जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुह पाका आपे तनी उनकी शोभा नहु बनी आपे कौत करे आनंद चोज आपे रस भोग निरजोग जिस भावे तिसे आपन नाय लावे जिस भावे तिसे खेल खिलावे बेशुमारता गंत्य तुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टारु अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारु अपहे का विस्तार जात सपावे तन सृष्ट उपाय आपने पाने ले समाये तुम ते पे नहीं किच होए अपन सूर सब जगत परोए जाकु प्रभु जीवा बजाई सच नाम सोई जन पाई सो समदर्शी तत् कविता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जीयन बपात जो जो रचियो सुत सहत्यात ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਣਿਆ, ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇਕ ਕਹਿਣਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਤੀ ਜਾਏ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਇਸਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਗ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭੈ ਨਿਰਵੈਰਨ, ਦਿਨ ਪੂਜ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਗੁਣ ਗਾਓ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਗਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਹਾਓ, ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਪੇਖੋ ਨੇਰਾ, ਮਿਟੈ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਅੰਧੇਰਾ, ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੁਹਿਲਿਓ ਸਵਾਰੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤੇ ਸਾਚ ਪਰਿਖਿਆ, ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਦਰ ਗਹਿਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਮਾਰੀ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਵਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਤਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਬਰੈ ਰੱਖ ਨਹਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਸੁਨਾਈ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸੁਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਤੁਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਆਰੂਪ, ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹੋ ਤਨਿਹਾਲ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ, ਅਮਰ ਪਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮਿੱਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਇਕਸ ਘਟ ਮਾਹੀ, ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਹੀ, ਨਾਉ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿਸ਼ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਧਨ ਹਰ ਤੈਨਾਤ, ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਚਰ ਵਿਸਮਾ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਸਾਬ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਸੁਵੰਤਰ ਸੋ ਬਾਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ, ਧਰਨ ਮਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਸਰਵ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਬੰਤ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਈ, ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈ ਦਿਸੇ ਸਮਾਇ, ਦਿਸਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਸਸੀਅ ਸੂਰ ਨਖਿੱਤਰ ਮੈਂ ਏਕ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੈ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਅਮੋਲ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਿਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮੁਖਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਭੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੈ ਸੁਬਚਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਰਚਨ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਰਹਿ, ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਬ ਨਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ, ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਰ ਪੀਓਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਮੋਹੀ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪਾ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰ ਗਜ ਸਭ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਜਨਿਆ ਬੁਝਾਏ, ਸਰਬ ਭੂਤਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਵ ਨੈਨਾ ਭਿਖ ਨਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾਪਨ, ਜਸਾ ਪੀ ਸੁਨਾ, ਆਵਣ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਲਿਪਤੋ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹਿ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ, ਇਸਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਈ ਬੁਰਾ ਉਰੇ, ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ, ਹਾ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤ ਨਿੱਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਉਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਜ, ਥਾ ਕੀ ਗਦਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪਾਏ, ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਕਿਉ ਜਾਣ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇਓ, ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे छिंद

सुनत कमाव तो दारू आप तेरे लुके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहत वाजे सुन सुन अंत करी प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महंत के माथी नान कुदरी तिन कह साथी शरण जोग सुन शरण ही आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए गल बैर भई सबरे अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जिंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो तनिधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हुए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब त्यूच पाए स्थान बौर न होवे आवण जान हर तन खाट चले जिन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप योग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कैमल सगल ति उदास सुंदर चतुर्थत काभिता समदर्शी दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भनी गुरु नानक नाम बचन मन सुनी एहो निदान जपै मन कुए सब जुग मह ताकि गत हुए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हरनाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कूट परा सा संग मिटे संत कृपा ते जम थे चुट्टे जाके मस्त कर्म प्रपाए सा सर नानक थे आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलभ दे तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मनवाए समानी दुख रोग बिन से भय परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाह

विद्या वेखम विचार। गावे को साज करे तानखे, गावे को जीले फिर देह, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी न आवे तोट, काथ काथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंत्र खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे प्रवाहो। साचा साहिब साच नाए, पाखिया पाओ अपार। आखह मंगह देह देह, दात करे दातार। फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार। मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिया सब आपे सचियार। थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावीऐ गुणी निधान। गावीऐ सुनिऐ मन रखिऐ पाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता। सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाए करी। जे ती सिरठ उपाई, वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले। जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे। सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ, सुना है धरत धवल आकाश। सुना है दीप लो पाताल, सुना है पोहे न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास। सुना है ईसर बर्मा इंद, सुना है मुख सा लाहन मंद। सुना है जोग जुगत तान भेद, सुना है शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास। सुना है सत संतोख ज्ञान, सुना है अड़सठ का इशनान। सुना है पढ़ पढ़ पावै मान, सुना है लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास। सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पातशाह। सुना है अंधे पावै राहो, सुना है हाथ होवै असगाहो। नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछै पछुताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ स्यों परगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावह मोख द्वार, मन्ने परवारै साधार।
ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵ ਹੈ ਨਾ ਭਿਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਹੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੈ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤੇਵ ਤੇਵ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾ ਵਾਏ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਉਹ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕੇਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕੇਵ ਸਾ ਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੇ ਕੇਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ,
ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਇਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੈ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੁਨਾ ਵਿਸੁਰਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕਿਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਏਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਕਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ ਕਿਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟ ਹੈ ਵੇਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੂਹੇ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖ ਹੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਅੱਖ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਅੱਖ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਅੱਖ ਹੈ ਇੰਦ ਅੱਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਅੱਖ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਖ ਹੈ ਸਿੱਧ ਅੱਖ ਹੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਅੱਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਅੱਖ ਹੈ ਦੇਵ ਅੱਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇ ਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਾਇਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵੈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜੇ ਨ ਰਚਾਈ
रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आही पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावै है लिखे आवै है भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लख होहे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिशाए पशुताए तिथै घड़िया सूरत मात मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताकि रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै केलो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल
ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਛਪਾਇ ਛੰਦ, ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ, ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ, ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ। ਕ੍ਰਿਪਵਣ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਨਿਰਪਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਹਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੂਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਹਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਇਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਇਆਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਇਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ,
अति हैं, अपे हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, तिरमान हैं, निधान हैं, तिरबर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रवीक हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नृसुरीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अशूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निधान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, कुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, प्रपंगी परमाथे समस्ती बेभूते, कलंक बिना नेक लंकी स्वरूपे, नमो राज राजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जुगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजवेश्वरं परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इस्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करता, अदो उर्द अर्धं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अशेदि अपेदि अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तास्तामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्तवंग निर्नाथे, नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग अपंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी, चरपट छंद त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुवाल छंद त्वा प्रसाद, आदि रूप अनाद मूरत, अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही आवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम बेहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल आ खेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जानही जे बेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बिहीन, चक्र बकर फिर चतुर चक, मानई पुर तीन लोक चौदह के बिखय, जग जाप ही जिह जाप, आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गड़न पंजन हार, कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश,
अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ कंजन दोष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाकत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार्षंद त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपौ प्रकाश निस दिन अनासु आजान बाहु शाहान शाहौ राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान काल अनपूत अंग अपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिसय अदिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद काथते के अशिज दिशा के अभिज पिशा के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के अदित सोक के अवतूत वर्ण के बेपूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आसुक वर्ण के सर्वा अपहरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अन पाओ अनुप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही में रिहा कह के पाक बेऐब है के गैब उल गैब है के अफबुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तमामल रजू है हमेशुल सलाम सलीखत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है ग्रीबुल परसुत है बिलंदल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरीफल अजीम है रजायक जकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे शुभं सर्वपादे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप है अछिज है अच्युत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद
अभंग है, अनंग है, अभेक है, अलेख है, अपरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंत है, अबंध है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेक है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांतव प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणंग, सर्वंत्राणंग, सर्वंकर्मंग, सर्वंतर्मंग, सर्वंजुगता, सर्वंमुक्ता, रसावल शांत त्व प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे, निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पुत्रय न पुत्रय, न सत्रय न मित्रय, न ताताय न माताय, न जाताय न पाताय, नृसाकं शरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रवाह है, अजय है, अजा है, भगवती शांत त्व प्रसाद, के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमें सुसलाम है, समासुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसन चराग है, के कामल करीम है, के राजक रहीम है, के रोजी दहंद है, के राजक रहंद है, क्रीमुल कमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खिराज है, ग्रीबुल निवाज है, हरीफुल शिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहेब किरा है, के नरकं प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के सर्बुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तुमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईश है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेक है, जमीनल जमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार शंत प्रसाद, मुनमन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हरनर प्रपंज, अनगन प्रणाम, मुनमन सलाम, हरनर अखंड, बरनर अमंड, अनुभव अनाश, मुनमन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनशिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, देश विश अपंड, जल थल महंत, देश विश बेअंत, अनुभव अनाश, कृत तार तुरास, आजान बाहु एक सदाह, ओंकार आद कथनी अनाद, खालखंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अंशिज गात, आजिज ना बात, अनचंज गात, अनरंज बात, अन टोट पंडार, अन ठाट अपार, आडीठ धर्म, आत टीठ कर्म, अनब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना शांत त्व प्रसाद, करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उभारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जग जाने है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्र है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खालकायक है, विश्वम्र है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, भाव भंजन है, आर्यगंजन है, रेप तापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बास है, जास के जास है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादं बेबूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे,
एक अश्री शंद अजय अलय अपय अभय अबू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेबूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुपरमंग बेबूते सदा सच्चदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेबूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं तुए प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कव जात निवारे भारी पूजान के भूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवैक पवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के तहम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाहा सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मुरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव निंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्रीपत के प्रस है पाग ते नार फेर ना देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशा को शीस नेवायो को बुतान कौ पूजत है पाशो को मृतान कौ पूजन तायो कूर के रिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾ ਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾ ਵਹੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰਿਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮੈ ਛਾਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਬਰਿਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਐ, ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜੋ ਕਰੇ ਹਉ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੂਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸ ਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦਾਇਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਾਤ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਅਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾ ਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਾਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ, ਅਬਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਹਤਾ, ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹਵਾ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਹਿਰ ਹੋ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰੇ ਹੋ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵਾਇ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ, ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਰੂ ਕਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਾ, ਖੜਕ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ, ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਅਨ ਕੋ ਛਾਇ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਯਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ, ਅੜਿਲ ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ, ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ,
सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तुहे बखान्यो दोहरा

सेव सकत आप उपाय कह करता अपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक स्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए।

हे सर्ग मैं दुख भंजन गुण तास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार, हे संत है कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हों दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजे नाम दान, राखों ही है परोए। श्लोक। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरुद्धरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। एहो श्लोक आद अंत पढ़ना, गौड़ी सुखमनि महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नम है, जुगाद गुरे नम है, सतगुरे नम है, श्री गुरुदेव नम है, अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे मिटावों, सिमरौ जास बिसंबर एक है, नाम जपता गंत अनेक है, वेद प्राण सिमरत सोदाखिर, किन्ने राम नाम एक आखिर, किनका एक जिस जीव बसावै, ताकि महिमा गनी नयावै, कांकी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारु, सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ, प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै, प्रभ कै सिमरन भउ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ कै सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुपला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ता कै लागौ पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किच सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माही समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते, प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंधक नेरे,
प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अन्दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निहचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभु मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल आकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दले तह केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तर है अनिक माया रंग तिख न बुझावे हर का नाम जपत आघावे जी मार गयो जात केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख पर

दैम अंध गुबारा, हर का नाम संगु जियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पुछानू, जय महाप्यान तपत बोकाम, तै हर के नाम की तुम पर छाम, जहा त्रिकामण तुझ आकर कह, तह नानक हर हर अमृत बरकै, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उतरे जनकूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै ब्रित बिबेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का पर न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तीन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विट भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया, अनेक प्रकार की बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास पिसर थीवे, अग्न माहे हो मत प्राण, कनिकस्व है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, ताओ भी होमे मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्व गुमाना मन ते हुट्टे, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो वह बहु देह अनीत, शुद्ध का हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहमूच, बहुत सियाणप जम का भव व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापै, भेख अनेक अग्नि बुझै, कोट पाव दरगह नहीं सिजै, छूट सुनाही उपयाल, मुहि व्यापै माया जाल, अवर करतु सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, सा संगे हों मैं छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रदान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते ऊंचा, जाका मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पा पुन्न नहीं लेपा, निर्धन को धन तेरो नाऊ, निथावे को नाव तेरा थाऊ, निमाने

उस सेवक नु कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ हुंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सए ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु दी सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु दी प्रसन्नता है, सतगुरु जी टुट के उसनों सतसंगत दी दात दिंदे ने, नाम दी दात दिंदे ने, अपना बना लैंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। उस अपने सेवक दे ये लोग ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुरु दी नजर करे रही है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ये मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बार है बार। ये मानस जन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारियो, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उस नूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असीं रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वह भगती करके तेरी असीं तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होने वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इसनूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटके से आए जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जाण दा गेट बन जाएगा। फिर की होगा? केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेनू ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौण दी भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसे दे दर ते कदी किसे दे दर ते, तू उस परमेश्वर दा हो जाए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। जदों तू परमेश्वर दा बन जाएगा
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁ ਨ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

0: लंच।
1: तो हम जो अगला चर्चा आप तीनों की चर्चा में करवाएगा कि शायद गुरुद्वारा साहब से हजूरी रागी की दरबार साहब जी हजूरी रागी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा बेनती करा भाई साहब से ध्यान इन्हों जो राग जिन्हें जिन्होंने कीर्तन करना है राग बिलावल से रामकली बेनती है भाई साहब शुरू करेंगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा